उतारे सबसे ऊंच राम परगास। निष्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा। उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे। गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया। सगल सृष्टि के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार। राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम। लूट ले साकत पत कोवे साध जना पद मल मल तोवे। पंच फूट जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए। तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे। कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए। कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगती सब होए खुआर। गौण महला पंजवा। कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ। जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए। राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे। रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे। जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ क्यों लागी सह समाद। थान कनंतर एक

जब पार ब्रह्म नानक निस्तरी है। गौण मेला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इत्तंते मार होए रही है सगल की रीना। कट कट रमैया सब में चीना। इन विद रमो गोपाल।

सुवाओ पद अभिमान जान प्रव संग साध प्रसाद हर्षो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आज दर्जे पावे मान मन तन निर्मल।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौण महला पंजवा। धूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंदन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पय वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पय आनंद पार ब्रह्म पूरन बसंग। कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए। कर्म कर्म इह तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम। सागर कर बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण। राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत पागे विकराल। जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार। गौण महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे। बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपा।

कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पति पावन प्रभु तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभु त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभु आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत।

हर तन खाट किए पंडार, मेरे सतगुर सबका सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौन महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंथ, मां विचार पंच दूते मंथ, सौ शरणाई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ सिमर

तारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तक्षिण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना

गायन बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौन मैला पंजवा। जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है। साध संग जपे निरंकार निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिसको वत ना है। जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो सर

पार अपने दास रखे कृपा पार। नानक के प्रभु प्राण आधार गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना एहो बिनसे ना एहो जाए आज जुगा दी रहा समाए ना इस उसन नहीं इस शीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं इस सोग सब किस इसका एहो करने जोग ना इस बाप नहीं इस माया एहो अपरंपर होता आया पाप पुण्य का इस लेप न लागे कट कट अंतर सब ही जागे तीन गुणा एक शक्ति उपाया महा माया का की है छाया असल अछेद अपेद दया।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल स्थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए।

जमुआ ताके निकट न जाए जन निर्वैर निंदक अहंकारी जन पल माने निंदक बेकारी गुर कै सुख सतगुरु त्याया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ खर पर जाए नितरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा राखो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत मिले कित सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चख मारी बोलत बोलत बढ़े बिकारा बिन बोले क्या करें बिचारा कहो कबीर छूछा कट बोले करया होए सो कब होना डोले गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

जले जैसे काश का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहा एले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए ले।

सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोध मूंड में मारियो, हस्त पाग के चीसा मारे, क्या मूरत के हो गलिहारे, आए मेरे ठाकुर तुम राजो।

अंधियार है, तीन बार पतिया पर लीना। मन कठोर अजहूना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ, ना एहु जति कहा वैसे हो, ना एहु जोगी ना अवधूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत ना को पाई रहाओ। ना एहु गिरही ना उदासी, ना एहु राज ना तीख मंगासी, ना इस पिंड ना रक्तूराती, ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती, ना एहु तपा कहा वे शेख, ना एहु जीव ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत होवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़गो काल, एहो मुंडिया सगलो दब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहाँ का मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंधन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूड पलोस कमर बद पोची, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इहां भोग विलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी राव, सुहागन गल सो है हार, संत को बिख बिखे संसार, कर सीगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बिचारी, संत पाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की ओ पिंड परायण, हमको दिष्ट परे तक डायण, हम तिस का बोझ

पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तौ लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रख किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े भूपत राजे है छेदे। सुहागन उर्वार ना पार, पांच नारद के संग विद्वार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते। रहाओ जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये, साधु बिन कैसे अवगत जाये। जैसे माँ पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन से नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस दिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सोदे, पांच पलीते को प्रबोदे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूछे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जपिए

छोड़े अन्न करे पाखंड ना सोहागन ना ओरंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खावे वटका सारी अन्न बिना न होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जान्या तन अनाद ठाकुर मन मान्या राग गौंड बाणी नाम देव जी।

तो न पुजे हर कीर्तना मा अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अछता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेडं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण सजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखई है।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नी

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवाता हूँ कि गौंड जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवणी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़

जाना, अभी कभी किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कौन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है, कबहू जाय प्याले, लोभी जियरा फिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जो तू देवे, अंते होए सखाई। राम करी महला पहला, सर्व जोत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी। रहाओ जा तीतर कब तीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार कहे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे मेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा पर पूरे, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तैरिया समाए। अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। किन बिद सागर तरिये, जीवतियां नह मरिये। रहाओ दुख दरवाजा, रो रखवाला, आशा अंदेशा दे।

करे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिये, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरे सिंगी बाजे लोग सुने, पत चोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंग राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे। सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा तामन सेव करे।

जन जाओ पांडे पाओ पवे तुझ आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दर

कौन बुझे विद जाने उत्पुज चलत आप कर चीने आप तत् पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत होई रहा दिन में रैन रैन में दिन उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित और न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी गुरमत पत कोई गुरमत परत पावे जन कोई योगी जुगत सहज करवासे एक दृष्ट एको कर देखिया पीछिया पाए शब्द तृप्ता से रहाओ पंच बैल गडिया देह तारी राम कला निभे पत सारी तार टूटी गाडो सिर पार लकड़ी दिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थे कंध जपे निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम किया है भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमुख भगत करो सब प्राणी, हृदय परदास होवे लिव लागे। गुरमुख हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा, गुर कार तली दिखलाया। पाग हीन मन मुख नहीं लिया, तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा, हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल, सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए, जो जो सुने कहे सो मुक्ता। राम जपत सोहाए रहाओ। जेवर पाग होवे मुख मस्तक, हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के, पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे, नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज न पाए, दया दया कर राखो हर जियो। हम दीन तेरी शरण आए, हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे। जन नानक बख्श मिलाए, राम कली महला चौथा। हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाओ। हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदरी पावे। हम होवत तेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी, हृदय मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड मेरे, जन मिलदियां तिल न लाईए। हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित न लाईए। राम मोको हर जन कारे लाये, हम पानी पखा पीसो संत आगे। पग मल मल तूर मुख लाये रहाओ। हर जन वडे वडे वड ऊंचे, जो सतगुर मेल मिलाये। सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याये। सतगुर शरण परे तिन पाया, ने ठाकुर लाज रखाये। इस अपने स्वाय आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाध लगाये। बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाये। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराये। राम करी महला चौथा। सतगुरु दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुरचरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम में हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सखाया रहाओ। मेरे इच्छुन प्राण न रहे बिन प्रीतम, दिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया। नाम हीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा।
सत गुरु दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उधारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम समारे, राम गुरु हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड पाग हमारे, रहाओ कोट कोट से तिस्त्यावे, ताका अंत न पावे पारे, हृदय काम काम नी मांगे, हृदय मांगे हाथ पसारे, हर जस जप जप वडा वडेरा, गुरमुख रखो उरदारे, जे वड पाग होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे, हर जन निकट विकट हर जन है, हर रात है कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारिक हर प्रत पारे, राग राम

तेरे मन सतगुर से सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्याप कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिख लिखिया तुर्क।

सतगुरु मिलो नवै निज पावो इन विधि तत्व बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजरे किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरु पूरा पाया तो उतनी सगल बेगनी ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा व्यर्थ पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का ता निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस

करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गतमित आपे जाने हर आपे पूर पंगारा ओसा रस अमृत मन चाखिया।

पूरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजै र बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिहवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुंगर साजा राम को नृतकारी देखा देखनहार दयाला जोता साज सिगारी रहाओ अफार मंडली तन सबाई ऊपर गगन चंदोआ पवन विचोला तर्क उकेला जल के ओपत होआ पंच तप

तब कोई ओडा नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाँछे तुस्त, कोई सुरजिंदू, कहो नानक जिन

रोवन हार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत हुकम अप

आए हिं सूत आई खाए चो में एक मत हो किया तय बिखरे थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे सुन जोगी कह मन मीठी लागे रहाओ दूजा राम कली मैला पंजवा आगा करके लाई थिगली लो नारी सुआ है अस्ति अम्बे का कर डंडा करया क्या तू जोगी गर्भ है परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी चिंता दो देहाई रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे तू का तृप्त न पावे नाथ छोड़ जाते लाज न आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी बाजे नित उदासेरा गुर गोरख की तै बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसनो हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे चिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपिया नाथ।

से कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरुमुख मिलिया रंग माना पौसोरे हर रस मीठा गुरुमुख किने विरले बीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्न निवारी अनद रूप प्रटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा। सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सब बलिहारी। काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मेहमा जा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन किस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

प्यारी जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता ओ अचरज नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी दही बलाए बुझ गई तृष्ण निवारी ममता गुरपुर लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर शरणा गुर पकराए।

वास ना को दूत नहीं बैराई गल मिल चाले एक भाई जा को गुर हर दिए सुखा ताको बौर ना लागे दुखा आपे आप सर्व प्रतपाल नानक रातो रंग गोपाल राम करी मैला पंजवा मुक्त पड़ता का सैत हृदय राम नहीं पूरन रहत उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे अपना कया आपना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध

उमीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट दिगुण नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करपा राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक बरन।

चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सातत इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे तिहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस सूठा कट कट रमैया तिन्हीं बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तें पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

पास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास जय।

तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना दुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे, रहाओ बिन हर सगल निरार।

कर कर खाते वडेरे, किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपे जन कोए, ताकि आशा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान।

जीवा, जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का

है। गुरुमुख नाम निमख हृदय वसै, हर के नाम की वडियाई, कीमत कहन ना जाई रहाओ। सूरबीर तीरज मत पूरा,

पौजल पार परला रहाओ। नाम निदान त्याय मन अटल, ता छूटे माया के पटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा बिना

जेवा भक्त पाई दत मत सो परवान जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम भाई राम कली महला पंजवां।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा। आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्त तू आप।

नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलभ देह सवारे जाए न दरगे हारे हालत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले चढ़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत हो है दो वे सुहेले अचरज पुरख त्या

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। रामकली महला पंजवा, मन माहि जाप भगवंत, गुरपुरै इहु दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास।

माटी को जल दहदिस त्याग है, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरत हर जियो आप, निमख ना बिसरे जी भगतन के, हाथ पैर मन ताको जाप रहाओ, प्रथमे माखन पाछे।

दर्शन पेखत हुए निहाल, जहाँ की तूर काट जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के, जहाँ

राम भगत जम का पौ पागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पै निरंकारी, गुरमत जागे दुर्मत परहारी, हम दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा में

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे। राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पीजे। जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कार।

जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पग पावे, राम नाम बिन नरक गया, तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया, करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया, हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

जिन एहो चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरुमुख समकर जाना हरक सोग ते बिरकत भया आप मार गुरुमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पहला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका के सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक से दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखा।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी छिन्नी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एन सुदीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी

कर पाव सागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा तेसना सुख पाया अंतर सब रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन

फारसे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सोजी पाए एहो जो

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरमुख देव डियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई सत संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग ना पा।

बुझाए नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाए राम कली मैला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाए संतो गुरुमुख पूरा पाए नामो पूज कराए रहाओ हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज कराए हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाए पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाए शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो पूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया।

कृपा तारी एक पेट करे सिरे अभिमानी तिंजू है बाजी हारी एक अनदिन पगत करे दिन राती राम नाम उधारी अनदिन राते सहजे

अपुट सच्चे पंडारी अपने भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कलतारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब कुछ है किसका आखन विकम।

सतगुर न सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जाय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जागत रहे दिन राती

आई, इतना नाम आप बुलाए, इतना गुरमुख दे जाए, सदा सदा समाए हो संतो, जिस दी वड्डी वड्याई, किस दिन अवर न कोई राजा,

की जय, जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रविया सर्व थाई।

किन्ही मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओत लेते। किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नाम यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीत लाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले ब्योरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार जना

इस सेवत मन आलस करे जिस विसरे इस निमुख ना करे हम अपराधी निर्गुनिया रे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वड पागी मिलिया नानक दास संग पा।

सेवक संग शीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत। जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद। राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के

अष्टपदी एकोंकार सतगुरु प्रसाद दर्शन तीर्थ पाप सब नाशे हर सों देह मिलाई मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत पूर मुख लाए।

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया नीचल वस्या जाई पूरे गुरपुरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न जाई काल सियानप उकत न मेरी पूरे गुरु कमाई जब तक

पगली कृष्ण उलाही संतो रहाओ। खोजत खोजत लाल इक पाया, हर कीमत कह न जाए संतो। चरण कमल क्यों लागो त्याना, साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पै निहाला, हर सिमरत तृप्त अघाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर, कट आवे कट जाई संतो। आप जुगादी है भी होसी, सब जीना का सुखदाई संतो। आप व्यंत अंत नहीं पाई है, पूर रहा सब थाई संतो। मीत साजन माल जोवन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम करी मैला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी। उमन केर महा अत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ। अंतर सूखा बार सूखा, हर जप मलन पै जुतारी। जिसते लागे तिन्हें निवारे, प्रभ जियो अपनी कृपा धारी। उधरे

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करके प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी

आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु ता पाया सह सोती मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां सबद गावणियां आईयां।

आधारो वाजे पंच सवक्त कर सवा गए शब्द वाजे कला दुत कर तारिया पंच दूत तुद वस्ती ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कह लागे कहो नाम कैस को हुआ तुत कर अनहद वाजे साची लिवे दिन देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा तिल कटे जान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सत्य सवारिया कहो नानक यू आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करें विचारिया एक परम पूले फिरें दे जिस एक नाम ला

द्वारे पाये, तन मन तन सब सौंप गुरु को हुकुम मनिये पाये, हुकुम मनियो गुरु के राजा वो सच्ची बानी, कहे नान सुनो संतो कछु अकथ कहानी। के मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी जिन एक परम कुलाया, माया का मोहनी तिने कीती जिन थगोली पाया, कुर्बान की ताक सैदुतों जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, के मन प्यारिया।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आंख वखाने, आंखें

तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार चूका सब

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नाही बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी।

कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिने

सब सोहला सतगुरु सुनाया पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरुमुख जिन्नी त्याया पवित्र माता पिता खुतम सहत सो पवित्र।

कर्म कमाए सहसे जीव मलिन है कुछ संयम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर्ष रहो चित लाए कह नानक गुरु प्रसाद।

सब रतन है हीरा जित जड़ाओ सिर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपसे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तैसार न जानी गुरु बाजो तत्तैसार न जानी तेही गुणी संसार कम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा।

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल छाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे विच्चो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चो आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल वे हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वन जारा, ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कीते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चल।

हर मंगल गांव सती गृह मंदिर बनया, हर गांव मंगल नित सतिये, शोक दुख ना व्यापे, गुरु चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुरु सब ज्ञानी।

में आए चाहे क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नगरी हर ने आ लिया। यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है, हर दिन अवर न कोई। कहे नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो, सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे, आनंद अनहद बजे बाजे हर आप गल मेलावे। तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जास जियो, तुर लिखिया परवाना फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सन

मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया।

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिये कहो नानक कर प्रभ मेरे के।

राम रमा कंठ उर्धारिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उधारणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुरु चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मा

जियो बिनवंत नानक सिमर जीवान जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत। रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामे कुल समूहा सब तरे त्रै रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया।

हार। बिन मिलबे शांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साद पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम परपूर छंत रुत सिसियर सी।

0: आए हरकंत जियो। गृहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया।
1: हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक।

क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

अफरे उतलियो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगोरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर

थाप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहूणा मुक्त किव होई विण नाम है विरोध शरीर क्यों ना मिले काटे मन पीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार। अगम अगोचर

ऐ सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किछ कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरण मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछाने।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर थाकी बहुतेरे जात असंख अंत

वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षों कर जाए। छीजय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

पाया निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटा सी तिस बिन अव

चे क्यों छूटिए हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटिए वड्डा आप तनी, गुरु प्रसादी छूटिए कृपा आप करे, अपने हाथ

तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे, ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा, आस निराशा तरिए, गुर पर

आए वन तृण तू डत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नान

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा।

सतगुर प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल।

कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए, नानक सदार जाए आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने, सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक, देहो सच्चा विचारो।

नावे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सच वापारो खंडत निद्रा अलप आहारं नानक तत विचारो दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुल चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी

ऊंदो खप्पर पंच कू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम।

एहो मन लाया कित बिद आशा मन साखाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाई है सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहो मन लाया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर

साज कमावे गत मित सब दे पाई। आद को बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी से वैसिक सो खोज लह हुकम बिस्माद हुकम पछाने जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाय लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किछ सूजे।

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचे वेद विचारी, गुरमुख परचे तरिय तारी, गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचे अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवृत नरवृत पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए।

गुरमुख पावे काट काट पेद, गुरमुख वैर विरोध गवावे, गुरमुख सगली गणत मिटावे, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता। बिन गुर पर मैं आवे जाए, बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए, बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट। जिस गुर मिले तिस पार उतारे, अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवे हार। तन हटड़ी एव मन मन जारा, नानक सहजे सच वापारा, गुरमुख बांध्यो सेत विदाते, लंका लूटी दैत संतापे, रामचंद मार्यो एह रावण, पेद बपीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख सायर पाहन तारे, गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहत्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए। कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार। पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाई है सार, जित गर्भ जाए तो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विच्चों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वस है सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधिया।

तत मिले मन माने दूजा जाए इकत कार्याने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से।

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरुमुख शब्दे सच निव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे दीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचो परम गवाए तन मन निर्मल निर्...

यो आत्म सुख तारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझे को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो शब्द।

मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विचों खोवे, तो नानक सहज समावे, इव मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछान रह, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लह, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन जोत तो शब्द लह, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रह, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हू न जावे, जा इहो हिरदा दे न होती, तो मन कैठे रहता, ना बिकमल अस्तंभ न हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप न हो तो रेख न काई, ता शब्द कहा लिवलाई, रकत बिंद की

तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए, नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे। नानक बिन नामे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे। गुरमुख साच शब्द बिचारे कोय गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन पीजे विरला बूजै कोए गुरमुख निज कर वासा होए। गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने। बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई बिन सतगुर पेटे।

जिसनो लाए पाओ। नाउ बीजे नाउ उगवे ना मेरे समाए, हो मैं एहो बीज है सैसा गया विलाए। ना किच बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए, अंबे से ती अंब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाए। नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए, लोक के वेखे बपुड़ा जिसनो सो जी ना है। जिस वेखा ले सो वेखे जिस वस्या मन माहे। मैला तीजा मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख पाए। दुख विच जमे दुख मरे हो मैं करत रिहाए। आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाए, जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाए। नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द से आई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया, आप पिसाए पिसाए तैसे बा

अभय निरंजन परम पद ताका पूखा होए, तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई। महला तीजा अभ्यागत एना अखियन जे पर कर पूजन करे।

अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

पाए नानक नौ निध पाए जे चले तिसै रजाए महला तीजा सहजे सतगुरु ना सेवियो विच होमे जन्म विनाश रसना हर रसना चखियो कमल।

पावे तिव हर गुण तास पौड़ी। छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, आपे सृष्ट सब साजियन आप मत दीनी। सिमरत सासत साजियन पाप कुन गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी सत्य सबद पतिनी। सब आपे आप वर

माया न जाए, अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, किन जमन मरन न चुकई हो मैं विच दुख पाए, जिन्नी सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, किन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख साए, नानक गुरमुख उबरे सच्चे सब समाए पौड़ी, आप अलिपत पदार है होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर सब।

जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुझ जे वरदाता नाए किस आस सुनाये गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाये रख तत सादा बाहरा सखी वड़ियाये जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाये कप अंतर अमृत रखियो न गुरमुख सह प्याई। श्लोक महला तीजा। बाबाणिया कहानिया पुत सुपुत करेन जे सतगुर पावे।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तछावे दुख सहे, ना सत हस्ती बद्दे संगल, ना सत गाई काव चरे। जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई, जिसनो दे तिस आई मिले, नानक ता को मिले वडाई। जिस कट पीतर शब्द रवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन। महला पहला। सो गिरही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप। महला पहला। सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औहठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप। महला पहला। सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध

0: रही पौड़ी, हर का सब शरीर है, हर रव रहा सब आपे, हर की कीमत ना पवे, किछ कह न जापे, गुर प्रसादी सलाही है, हर पगति रापे, सब मन तन हरिया होया, अहंकार गवापे, सब किछ हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे कर आया, अजय सो रोवे पीछा खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए।

कर कर मांगे तीखिया जाए, रोवे किरपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाए पता।

कोई पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है, दस में गुप्त रखी जाए। बजर कपाट ना खुलने, गुर शब्द खुली जाए। अनहद वाजे तुन वज दे, गुर शब्द सुनी जाए। तित कट अंतर चानना, कर भगत मिली जाए। सब में एक वर्तदा, जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा, अंधे कह राह दसे, अंधा होए सुजाए।

कोय जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच करती सब किस

हाल हले मी हाली चित चेता वत्तर वक्त संजोग नाव बीज बसीस बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढ़ोले अंतर प्रगास।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल, मनुआ अंध न चेते पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

मत्सिर आवे पार पौड़ी, सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चल, सच तिराइन से सच्चे जिन हर खर्च तम पल, भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचल, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल।

सोई सेवी है सदा सदा जो दे, नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए, अब गुण वंजन गुण रवे हैं, मन सुख वस आए पौड़ी, आपे आप वर

सतगुर संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजू

मन सन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो

सदया माया स्वावड़ा तम संचया नाम अपार अच्छे पैलु है मन्ने न हुकम अपार। जन नानक मंगे दान।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

सतगुरु सरवर रत्नि पर पूरे जिसनो प्राप्त सो पावे सुख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुरु के हुकुमावे रतन पदार्थ मानक सरवरे।

दारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठगै से ती ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सतगुर सराफ।

आपके वैद आप नारायण हैं। ए वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा हुक्म।

सता पौड़ी, जिस तैमस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद।

जीव दै दे गुना सत पैन पराव है पारंगत दान परीव दै नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दै लैने करे उन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दै मत

खती है, जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहटी है।

तीर्थ वर्त नेम सुत संजमे रव सत गहने दियोरे सुरत प्याल सुधा रस अमृत उहो महारस प्योरे निजर धार चुए अत निर्मल ए रस मनुआ।

तेरी, अब तब जब तब तू ही हम तो है प्रसाद सुखी सद ही रहा तोरे परोसे मगहर बस्यो मेरे तन की तप्त बुझाई पहले दर्शन मगहर।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पग जाई, साधु हुए सो भगत पछाने।

जी मुखभेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडव।

आपन ऊंच नीच कर भोजन, हथ धर्म कर उदर परे, चौदस अमावस रच रच मांगे, कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा, मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने, हमरे राम नाम कह उबरे, वेद परोसे।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन इक बिरवा उपजिया, करती जड़हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मोन दया कर चोली, पत्र का करो विचार रे। चिंता इहो तन सियो अपना, नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी, जब तब संयम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध विपूत

करबारी कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया पवन इद तरन तारन चिंता मन इक निमख ना एहो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई। दया तरम अर गुर की सेवा ए सुपनंतर।

जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

बेदार जागत मुसीहत हौरे पाई निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो नींबा केला पाका झार नालियेर फल सेबर पाका मूरख मुग्ध गवार हर भयो खांड रेत में बिखरियो हस्ती चुनियो न जाई कह कमीर कुल जा।

आकाश मधे परमी अले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले राव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये

बालक पालन पौड़ी अले अंतर बाहर काज बिरुदी चीत सो बारिक राखी अले वेद पुराण शास्त्र आनंता गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावोगो बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवे परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय अफदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर

दशम द्वारा अगम अपारा परम पुरुष की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे सुख

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाए।

नर नर हरे पंच दोख असाध नगर में एक सिंह पल दूर करे वडपागी हर नाम ते आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभु ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण

मन सेव सफल हर काल, ले गुर पग रे निरवाल, सब दालद पंज दुख दाल, हर हो नगर निहाल, राव हर का ग्रह, हर आप सवारे हो, हर रंग रंग महल।

नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीरत कल युग विच उत्तम मत, गुरमत कथा कदंती, जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हो कुर्बानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या, तिस जन सब भूख लहंती, नानक जन हर कथा सुन तृप्ते, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई आन सुनावे हर की हर गाल, तिस को हो बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल।

अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहा सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन ज्ञान त्याना कवन गुनी री जावे सोई जन सोई निज पगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमक ना प्रभ बिसरावे संत संग लग

मैं पीर रहाओ तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो हाथ पैर जन कै संग बस्यो मन ते नाहि विसारियो रहाओ बरन चेन नाहि किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो नट महला पंजवा चरण

पूरन पूर रहे कृपा निज कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हरे राव हर हर हर हर हर मन प्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पे प्रभु ठाकुर गुर के शब्द सवारे मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकुर अग

रे सहस मूरत एको प्रभु ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध विसारे गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे।

में सुत वजी है दैदुस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुरु निस्तारे विवेक गुरु गुरु समदर्शी किस मिलिये शंख उतारे सतगुर मिलिये परम पद पाया हौ सतगुर के बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन आल जाल समाले बिख माया के बिस्थारे आई रैन पया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कू

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनू मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस ना परस।

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदे पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण।

सरदा भगत मन पावे, जन की पै सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे, सब देखे ब्रह्म पसारे, एक पुरुष एक नगरी आवे।

जन अंतर रुद लोच है प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वर्त है कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा।

सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर

गुर शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं सातो तुम मंद हम निकीरे नाम के कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावने सब दुख पंजन राया।

हर हार हर पुर धारियो, जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा। जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साधे आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ। वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुरु मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बात।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब के निमित्त पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहा हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्त के तुरली किया, गुरुमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालिये, जो लोन जले गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित थीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर कापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग नाल है सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर शोभा।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन क्यूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जानू हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल विख हर जस जाला, मन अनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल विख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीस की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पूख तिखाट। छक्का पहला माली गौड़ा में।

अवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचत।

राम साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सिंह गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जां कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जां कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक।

बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कटकट राम समानारे, एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे, प्रणवे नामा पैने कामा को ठाकुर को दासारे। राग मारू मैला पहला कर पहला चौ

नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई। मिल माया सुरत गवाई मूरख मन काहे करसे माना, उठ चलना खसमै पाना रहाओ। तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई, किछ खा जाय किछ तर जाय जे बाहुर दुनिया आये। सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखा।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसें जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना।

हुकम पछाणे खसम का दूजी अवरस्याण काए तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको हवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना इहो तन डूबे ना इस तन को मिले।

किन्हें परमगत पाए। पणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता यो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मूड़े काये चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पी जय। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जय। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट के साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच न लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर न देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्ण रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पे खारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती, गुसाई तेरा कहा नाम कह

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुरु बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंजम।

मनूरों कंचन होए सो साचा सालाही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अंदिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू अंदिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु देव।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदामे मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिख पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोर बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति

बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जप्या हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस्त्यायो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जप्या मुख पंडत हर गाया नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

पास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मन मुख भाग विहूणिया तिख मोहिया कंदी पास गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार है।

सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजाने जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजे गुरु शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रव राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन मुख

हर हृदय सदा सदा समाली, हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हाँ अंदिन नाम लही करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पै सिद साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया पगत प्रहलादे हरनाखस नखे बिदारे बिदर दासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त

ए विद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ, मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता, दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै, महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा, कवन थान तीरो है नामा। कवन बस्त अंकारा, कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घरख नहीं जाने हो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक कहो सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाय पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समारसने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुला रहे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अग्न संग ले जा रहे हो, मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बिदारे हो रहाओ, असाद रोग उपजो तन पीतर, तरत न काहू टारे हो, प्रभ विसरत महा दुख पायो, एहु नानक तत विचारे हो, मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ, जा के वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार, नानक गयो

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारयो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें एआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हों हों करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन बिद पार पराए त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुभव अचरज रूप प्रत्यक्षया मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूजी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक।

ताओ लागा गोविंद सिंह काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो परगास।

सच बैठता सच स्वाव बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू मैला पंजवा वेद पुकारे मुख ते पंडित का मामन का माथा मोनी होए बैठा एकांति हृदय कल्पन गाथा होए उदासी गृह तज चलियो छुटके नाही नाथा जी की कहते हैं बात कहां आप मुक्त मोको प्रभु।

रूप रंग खुशियाँ मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूरे रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

सुरत अवतारा हो में आवे जाई मन तुचन न पावे राई बाज गुरु

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहार।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसे गीता के, साध संग पै जन मुक्ते, गत पाई नानक नगर नहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते देखा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत्य पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्तन।

उठ फिर पावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अंगनेर मूठो बेचारा अनेक दोख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाई प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात न बंद न मीत न जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ जगत।

प्रेम भगत हो वत निस्तारा, साध रूप अपना पन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावा।

नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतत उधारन तारन बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभ तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा, मारू मैला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो, अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो, गुरमुख तत् ज्ञानो, देखत सगल त्यानो, तजियो मन ते अभिमानो, नेचल तिनका ठाणा, गुर ते मैल पछाणा, आन दिन गुर मिल जागे, हर की सेवा लागे, पूरन तृप्त अधाए, सह समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गुमान और सब किस मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापे मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तक ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने मेरे मन ना।

मूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत ओहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बत्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू मेला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत पुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कबू नहार मारू मेला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसें प्राप्त नाम ते

नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीक साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विच्चों गर्भे निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया, आवे जाए पुवाई जोनी रहन न कितनी खाए।

रूप प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण।

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो गनकाहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल पास जब घर में मेली ते शुद्ध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लागो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत तय जागो कहा होत अब कै पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मैं पाग्यो मारू अच्छदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सतीरथ बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीरथ हर नाम है किल विस्का चनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माहि समाना हों मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कह सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

पाए कार कमावनी नित तोता पैसारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराइए गल औगुण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साचे वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौण निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दीजे दोष गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाखा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोय ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुकत सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तामत जग बांधिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो नाई खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाय जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख नहीं गाडे ला दे चार विछड़िया मेला नहीं दुख करो जम द्वार अगे क्या जाना नाहे मैं पूले तू समझाए पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए साजन देखा ता गल मिला साच पठायो लेख मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू तूप गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग सच पावे साचो चवे छूटे सोग विजोग नानक नाम ना विसरे जो तिस पावे सो होग मारू मैला पहला
साची कार कमावनी होर लालच बाद इह मन साचै मोहया जेवा सत्साद बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की साची सुरत सुहावनी मन मुख मत पी की मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरक तुर की साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाख्या मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद निगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ, तेयड़े तिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास, लेप निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सच्चा साथ न टुटई गुर मेले सहिया। बलिहारी गुर अपने सद बलिहार जाओ, गुर बिन एता पव तकी, गुर तिर मेलम दितम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासिया देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए अपन लिया किछु ना पाए कर कृपा कलकारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं।

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो।

आर्यो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्झायो। जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो। जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग। हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग। मेरे मान को स्थान मीत साजन

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापैखने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चलियो सर्व थान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल न शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहु औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने कट कट राम हे आलिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचय तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए, जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे इक तत्ते इक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजनहार है लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन चोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो काणिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लभ पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मर

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवलाए।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे, जो तुझ सेवे से तुझ ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता सुत प्राता, सगले सैल उपाय समाए, अलख ना लखना जाई है। कर कर साकी मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है। पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देवड़ आई, सबसे दाता तिल ना तमाई, पर पुरतार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिरजनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर केती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना आवे काई है। साची कीरत साची बाणी, होर नदी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है। जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, बिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले परकारे, मन मुख तक के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ बढ़ाई है। काम क्रोध अंकार निवारे, सत्तर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामने समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया,

नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वर्ते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परखे साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वर्ते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे न दरगै सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सो

करम तरम कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, पर पंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभवन ज्योत तरी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पति जय अलख अपेवा।

ज्यों वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बित्रे दुख पाई है ओजन साच मिले आघाई नाम रतन साची वड्याई चीने आप पछाणे

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बाद विरोध है कोई नाही। मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हें उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवा।

जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है, एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है, एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे दे खपावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन बिद पार लंगाई है, गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है, मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े ना ही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत एह बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे सात परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है, बूजो हर जन सतगुर बाणी, एह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है, छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूर मारे काल उछाहारा, साकत पूर पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पर आई, पढ़ पढ़ दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंकटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पढ़ पढ़ अगन सागर देले।

नाच पछाणो अंदर दूर नाही देखो करनंदर विघन नाही गुरमुख तरकारी क्यों पव जल पार लंगाई है देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी ना जियो मरे न मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई है ओ निर्मल है नाही अंधियारा ओ आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन में आई जाई है गुर के सेवक सतगुर प्यारे कोई बैसे तक सो शब्द विचारे तत् लहे अंतर्गत जाने सत संगत साथ वडाई है आप तरे जन पितरा तारे संगत मुक्त सो पार उतारे नानक तिस का लाला गोला जिन गुरमुख हर लिवलाई है मारू मैला पहला केते जुग वरते गुबार ताड़ी लाई अपर अपार है तुंदू कार निरालम बैठा ना तद तंद पसारा है जुग छत्ती तिने वरताए ज्यो तिस पाना तिवे चलाए तिसे शरीक न दिसे कोई आपे अपर अपारा है गुप्ते बूजो जुग तत्वारे कट कट वरते उदर मजारे जुग जुग एका एकी वरते कोई बूझे गुर विचारा है बिंद रक्त मिल पिंड सरिया कौन पानी अग्नि मिल गिया आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा है गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम समाले अंतर उदर मजारा है चार पदार्थ ले जग आया शिव शक्ति करवा

कथ दया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुरु मिले ता सोजी होई बिन गुरु बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुंह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मार

श्री जय, बिन अब भक्ति बाद मरी जय, सर अफसर की सार न जाने, जब मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किसी मंदा आँख न चले, सच खरा सच आरा है, साच बिना दर्श जय न कोई, साच शब्द कह जय पत होई, आपे बख्श ले तिस पावे, हो मैं गर्भ निवारा है, गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगे जुगंतर की विद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा है, मारू मैला पहला, हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल संभाले, सो अंतर दाना बीना है, गुर सर्वर हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है, हर अगम अगाओ अगाध निराला, हर अंत न पाये गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंग लीना है, सतगुर बाजो मुक्त किने ही, ओ आद जुगादी राम स्नेही, दरगे मुक्त करे कर कृपा, बक्से अवगुण की नाहे, सतगुरु दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रख पाए, जम जागात नाही कर लागे,

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परा।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

दुख कनेरे, नरक पचे अज्ञान अंधेरे, कर्म राय की बाकी लीजे, दिन हर का नाम विसारा है, सूरज तपे अग्न बिख चाला, अपत पशु मन मुख बेताला, आशा मनसा कूर कमावे, रोग बुरा बुरे आ रहा है, मस्तक पार कल्लर सिर पारा, क्यों कर पव जल लंगस पारा, सतगुरु बोहित आप जुगादी, राम नाम निस्तारा है, पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा, जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् विचारा है, कूड़ मुठी चाले बहुराही, मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही, अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा है, सतगुर तुठा थच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए ना गडई मूले, जिस सतगुर राखन हारा है, खेहू खेर ले तन छीजे, मन मुख पाखर फैल न पीजे, करण पलाव करे बहु तेरे, नरक सुर्ग अवतार।

आतत माया को बहुतावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कहीं है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है, राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है, मारू मेला पहला, कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो सबद समाना, जिसको सत गुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, किसमें राम रतन लैचीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत के हो निस्तारा है, साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरयो पार अफारा है, बिन गुर साकत कहो को तरया, हो मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है, हो मैं

चाले चाले बिखला दे छार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

मारे तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विदाता है तू आद जुगाद करे प्रतपाला खट खट रूप अनूप दयाला ज्यो तुद पावे तिवे चलावे सब तेरो किया कमाता है अंतर ज्योत पली जग जीवन सब कट पो गए हर रस पीवन आपे ले वे आपे दे वे त्यो लोई जगत पित दाता है जगत उपाय खेल।

चोर मुह करमंदर इन साकत दूत न जाता है। दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले शब्द सुरत बिन आ

साकत फांसी पड़े इकेला, जम वस्किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाजना बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जाने, सतगुर अलख कहो क्यों लखी है, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन्न, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन जीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मन सामार समाता है, सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन कर चतर करे विचारे, आपे करता कर कर

तत न पाये सच सूचे सच रहा है सब साला है सुन सुन आखे आपे दाना सच पराख है जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब चलाहा है सुन सुन आखे कीर्ति बाणी सुन कहे को अंत न जाने जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए जो जन्मे तिस सर पर मरना सिर्ट पया सिर साहा है संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए दुख सुख ही

पखर जिस तन पल्ले शब्द सके ओ महा है। काकी सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत चूका जम का फाहा है। सबको बोले आपन पाने मनमुख दूजे बोल न जाने। अंधले की मत अंधली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिर्फ सजा।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मैला पहला दखनी ताया नगर नगर घर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस समाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुरसब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर खापे हुक्म रजाई दसवें पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इकवासा आपे की तो खेल तमाशा बल्दी जल निवरे कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर्क उपाय तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पौने खेल किया सब खाई कला खिंच टहाएंदा तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद रुण चुनकार सदा सुन निरपो के करवाएदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ साजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएदा आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

करम तरम सच हाथ तुम्हारे, रे प्रवाह अखुट पंडारे, तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएंदा, आपे देख दिखावे आपे, आपे थाप उठापे आपे, आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएंदा, जेती है तेती तुद अंदर, देखें आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप गणाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परवाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधित साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरु विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देव डियाई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान त्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

को शेख मसाई कहा जी रैयत राव न हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता।

पहला पहला आपके आप उपाय निराला, साचा थान की ओ दयाला, पौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है, दसवें वासा अलख अपार है, सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा, रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई, जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाएंदा, गर में हाथ पटनवा पा।

जुग है जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएदा पंच तत् सुनो परिभाषा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोई मस्तक लीके पाप पुन भी जाएदा उत्तम सतगुरु पुरुष निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे भाग मिलाएदा इस मन माया को।

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत पुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवर्ताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत।

किया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आए।

प्रचाया चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतरवस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती क्यों सात वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचोरे जन पाई सतगुरु सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंचलोक वसें।

दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष।

सच्चे मेल निवास निरंतर आवन जान चुकाया, ना मन चले न पौन उड़ावे, योगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम, प्रभ आपे वाय सुनाया, सौ बैरागा सह समाता, हो मैं त्यागी अनहद राता, अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया, दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फाती, नानक हर प्रभ सो पौ पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोद सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, सब दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसमें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाए जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग करना, अकत कट है देखे अपरंपर, पुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मा बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कह कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पग जुतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम

हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस जोत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुर देखाया। सतगुर मिलो आपे प्रभ तारे, सत कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया। अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनक चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ को सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया। अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बार सो प्रभ जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्व तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, जीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तंते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सत गुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर से वो संत न की जय, आशा माह निराश रही जय, संसार दुख बिना सन से वो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाच्य है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करें विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करें उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत नहीं।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर ना होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत ना होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर शब्द सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, हम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजह है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

काया संगारे, मर मर जम में शब्द ना विचारे, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने सुध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया वड पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हों होर ना जाना, सहजे होए सो होई है। बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हों मैं शब्द खोई है। आपे गुण

वह पाए सुभाई है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक गृह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे।

दरसा तै पत पाई है मारू मैला तीजा जो आया सो सबको जाती दूजे पाए बांदा जम फांसी सतगुरु राखे से जन उभरे साचे साथ समाई है आपे करता कर कर वेख है जिसनो नदर करे सोई जन लेख है गुरमुख ज्ञान से सब कि सूझे अज्ञानी अंध कमाई है मन मुख सहसा बूझ न पाई मर मर जम में जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साथ समाई है संदे तावत मन पया मनूरा।

का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुर मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुर बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुरु सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे नहीं पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है किसनों कहिए जा आप कराए जित पा

तितरा चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे त्यो चलाई है। आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता एक है गुप्त प्रगट है आपे गुरुमुख परम पहु जाई है। गुरुमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैचीर है सब कट भोग में सदा दिन राती आपे सुख निवासी है। सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है। किस सेवी तै किस सलाही सतगुरु सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है। देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा सतम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अवनासी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पात्र मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अवनासी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बस लें सुख पाए सभी नाम निवासी है। तिर तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज अपारा सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणया रे नो गुण की जय आपे बस लें नाम दी जय गुरमुख हो वे सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई गुरु प्रसादी बूझे कोई गुरमुख हो वे सो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई माया मोह सुध न काई मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न संभाले अंत बिगूते पर निंदा करें बो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते।

आपे लाए ले जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वडियाई, गुरमत एवं मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी।

मन मुख ना बूझे फिर आणी जमकाल कड़ी मोत निहाले अंधिन आरजा छीजे अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिर ऊपर जमकाल।

दुआश्रिया का खत्म है आपे आपे गुण में पी जय है। गुर के शब्द सदा जन तो है नाम रसायन एव मन मोह है। माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय है। सब नाम विच वर्त है एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। हौ मैं मार सदा सुख पाया नाय साचे अमृत पी जय है। किलविक दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किस आपे आप वर्ते गुरमुख तन मन पी जय है। माया अग्न जले संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे। अंतर सांत सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जय है। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जमना छोड़े बहु कर्म कमावे। सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये हर हर रसना पी जय है। मनमुख अंतर पगत न होई गुरमुख पगत सांत सुख होई। पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जय है। ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर करी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक नाम रते मन साचा, सच्चो सच रवि जय हे, मारू मैला तीजा, सच्चे सच्चा सच रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ता।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख वो वै सो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवे सच प्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अंदिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होवा, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, और माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया, गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है, जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा।

जा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संद आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुत चित विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है हम गुण ना ही क्या बोले बोले तू सब ना देखे तोले तोल ज्यो पावे त्यों राखे रहना गुरमुख एक को जाता है जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक में प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया कमल है कुमलाना मन मुख शब्द न

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एको

आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर, गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा, आपे बसे शब्द विचारा। जो तुद भाव है सोई करते, सच्चे स्यों मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो। जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदरो

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञानमती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तन कोई मेटन हारा, गुरु कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विष काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर से ती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख वीर ली जाता है, मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बख्शे सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गढ़ काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हो मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विर ले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे, एकस बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदिन नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र किसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुकम अपारा, मन मुख हुकम न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाणे, तावत राखे इकत

खबर सला है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरमुख नाम त्या।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कट अंतर शब्द सच्चै ओ माहे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हौ मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख कर चै तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख हो वै सो अलिप्तो वर्त मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्द नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख हो वै सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे पर...

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मुख साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए, हम दिन भगत करो लिव लाए। हर गुण गावे सद ही निर्मल।

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवै सो जंत्रा पै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सब दे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

मेरे प्रभ साचे इस खेल रचाया, कोई ना किसी जिहा उपाया, आपे फर्क करे वेख विवसे, सब रस दे ही महा है, वाजे पौन ते

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावना।

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सराहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तक अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

गुर तेसो जी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रईयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसै ते पाहा है, सच संजम सतगुरु दुआरे, होमे क्रोध शब्द निवारे, सतगुरु सेव सदा सुख पाये, शील संतोख सब ताहा है, हाँ मैं मोह उपदय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सब सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

ना होवै संयोग वियोग करता लिख पाए कीर्तना चले चलाहा है जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए हास्यो सद ही रह समाए गुर कृपा से मिले वड्याए हों मैं रोग ना ताहा है रस सस खाए पिंड वधाए एक करे गुर शब्द ना कमाए अंतर रोग महा दुख पारी बिस्ता माए समाहा है वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने गुरमुख होवे सो तत बिलोवे रसना हर रस्ता है सार वस छोड़े बाहर तावे मन मुख अंधे साध न पावे अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल न ताहा है मन मुख देही परम पकारो दुर्मत मरे नित होए खुआरो काम क्रोध मन दूजे लाया सुपने सुख न ताहा है कंचन देही शब्द पतारो आम दिन पोग पोगे हर्षो प्यारो महला अंदर गैर महल पाए पाना बुझ समाहा है आपे देवे देवन हारा किस आगे नहीं किसे का चारा आपे बक्से शब्द

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकाश।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाएदा, जब तब संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएदा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएदा, एक माया मोह गर्भ व्यापे, हमें होए रहे हैं आपे, जमका लेकी खबर न पाई।

अच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कह शब्द पचाता सुगनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी शरणाई ज्यो तुद पावे तिवे चलावे तू आपे मार्ग पाएंदा है भी साचा होसी सोई आपे साजे अवर न कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा।

मत दिवे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंध ना केते मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच

ही सुख पाएगा। लख 84 आप उपाय, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्तार वासा, बिस्तार फिर पाएगा। कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवे चलाएगा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तत न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएगा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेखे, गुरमुख आप बुझाएगा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएगा। आप निराल मोहर तंदे लोई, गुर प्रसादी।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा। होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा।

सहसा मूल न चुके विकारा गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए सच्चे सच समाए दा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाए दा जप तप संजम नाम प्यारा किलविख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल होवा सहजे सह समाए दा अंतर लोभ मन मैले मन लाए मैले कर्म करे दुख पाए कूड़ो कूड़ करे वा पारा कूड़ बोल दुख पाए दा निर्मल बाणी को मन वसाए गुर प्रसादी सहसा जाए गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाए दा आप सिरंदा सच्चा सोई आप उपाय खपाए सोई गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे मिल साचे सुख पाए दा अनेक जतन करे इंद्री वसना होई काम क्रोध जले सब कोई सतगुरु

को पाएगा। सतगुरु सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुरु ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएगा। सतगुरु सेवे सेवड़ पागी,

जय कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएंदा हों मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कहानी पीड़ाएंदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएंदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रत

अपना पाना आप मनाएंदा, तेरा पाना मन्ने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएंदा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएंदा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना न मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल न कभू पाएंदा, सतगुर मेले दे वड्याई।

गुर कृपा ते मन तन पी जाए, रसना नाम से आए रस पी जाए, रस ही ते रस पाएगा, महले अंदर महल को पाए, गुर कह शब्द सच चित लाए, जिसनो सच देव सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नामे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा सुख पाए।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिनी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याय सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है।

अंतर पाले, गुर कै सबल हर नजर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर सबदी, नगरी नगर मिलाएगा, वड्डे भाग एवो शरीर पाया, मानस जन्म सब चित लाया, दिन सब दे सब अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाएगा, एक चित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला फिर हाथ न आवे, पद किसे पछताएगा, गुर के शब्द पवित्र शरीरा, किस विच वसे सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन वसाएगा, हौ मैं गणत गुर शब्द निवारे, हर जियो हृदय रखो उड़धारे, गुर के शब्द सदा साला है, मिल साचे सुख पाएगा, सोचे ते जिस आप चिताए, गुर के शब्द वसे मन आए, आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएगा, जिन मन विच वठ पाई सोई जाने, गुर कै सबदे।

सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया ना जाए, मन मुख फूले मोए बिलाए, जिनको नजर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वे वस्त समाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले नाम न चेते बद्दा जमकाले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पुलाएंदा गुरमुख एक स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मने समाए साचे शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाएंदा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया आपे आप मिलाएंदा माया मोह परम न पाए दूजे पाए लगा दुख पाए सूहा रंग दिन थोड़े होवे इस जानदे बिलम न लाएंदा इहो मन पै पाए रंगाए इत रंग साचे माहे समाए पूरे पाग को इहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाएंदा मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जीव मेले आप मिलाए, गुरु

कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हाँ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा।

मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे सो चित लाया। हऊ मैं विच सब जले शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमाए।

हारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या।

पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मो गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग न व्यापे, सहजे सह समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता, हर तिसे सिरे वो प्राणी है, जा को राखे हर राखन हारा, ताको कोई न साक्ष मार।

परी जन नानक नाम जपो पव खंडन सुख सहजे रहन विहानी है जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परे तिसकी पत राखे।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह था

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा।

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जयकार जपो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईश है, तिस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जाता।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन रात।

परदेश न जाओ वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर जित उतरे भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना।

तन कछु ना समझे चंचल काचे बहुर बहुर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासाए आई आ गया फिरों बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो।

करहे भगत अर रंग अपारा, खिन मैं था पुथा पनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुकुम मन भगती जाहे, जिस देहे दर्श सोई।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा, गुर सासत सिमरत खट कर्मा, गुर पवित्र स्थाना है, गुर सिमरत सब किल विखनास है, गुर सिमरत जम संग न फास है, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना है, गुर का सेवक नरक न जा।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दर गै देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक कौ बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले न जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तैं आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे

कल युग में कीर्तन परदाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुलतारे, हर दरगे पत स्यों जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योत सैंति आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठ

श्रवण सुनिए। दूजी अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया, आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा, आपे कट कट सारणा। एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक त्रिपत अघाए, सब सह तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा। सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा अपारा, ऊने परे परे पर ऊने, ए चलत स्वामी के कारणा। मुख सलाही सच्चे सा, नैनी पेखा अगम अथा, करनी सुन सुन मन तन हरे।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसै बो देवा, सगल भगत जा की कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, सो गुरु

पूजै सतगुर साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायणा जां की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे कामतेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुर पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच तातु पै पार ब्रह्म होवे।

सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए ले सो सेवक जिस वड पाग मथाएना गुर की महिमा वेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलायना जा की सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए तिस जम के पंथ न पाएना संतन की शरणाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जा।

चरण तोए सुख पायणा, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान देवायणा, पए कृपाल गुसाई मेरे दर्शन।

दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन का।

परम रुणा गुरु का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन

गुर ज्ञान अंजन काट्यो परम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊंचे ते ऊंचा दरबारा कह न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औखद।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर है एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही।

मंगन ने किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद बिनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाना से कर्म कमाए तुझते बाहर किछु ना हुआ।

अत तुम पारा इक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा इक ना पार लंगावे आपे सतगुरु जिन का सच बेड़ा कौतक काल एहो हुकम पठाया जी जंत उपाय समाया वेखे विकसे सब रंग माने रचन की ना इक आखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड्डा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन तुंदू

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ पूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपग्गा पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोलो।

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कै संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

सिमरत नाम अन दिन जागे, अनद विनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग न ताल का, रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई।

चरण कमल हृदय निथारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्पण तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मेरे साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत बेद वखा।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

बेकार कमाए, नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

नानक जे इव मारिए गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे शांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे खिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हथ ना आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुद है लागे। श्लोक महला पहला। सर्बे जोए अगच्छमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लागणो।

नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नवनिध नाम एक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड मैला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए।

बीजो अवर न कोई महला पहला। सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव। सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी। जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे। धर्म राय तिन का मित है जम मग ना पावे। हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुर्ग मृत पयाल हुक्म न जाई में।

जग में राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार, नानक नाम न चेतनी, होए मैले मरे गवार, मैला तीजा, दुख लगा बिन सेवे है, हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा, आपे दे सजाए, नानक एवे जानिए, सब किछ तिसैर जाए पौड़ी, हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नाम है तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही, बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक मैला तीजा, इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए, अंदिन फिरदा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रहे।

महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर सब जी।

सब कोय। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोहे जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आहे।

देख कपड़ भोग डरावने जिचर फिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी।

तू होर तू पाए न लभई अब नासे श्रेष्ठ करण डखने महला पंजवा। जे तू वतै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

आपे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा, पोरे पोरे।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा। सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं कीतियों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एवं हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

सजन मैंडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जानन अपना कही न ठाहे चित। महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल।

जोड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै। जिन हर पाणा मन

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित डाढ़ी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ डाढ़ी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाढ़ी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन नावे आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो ना पाईए, बिन सतगुर मनवा ना लगे। धर्म धीरा कल अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

जान चंद्र बा नगरी सुख घटाओ दोए इस पंधानू घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन ब्रह्म के सिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायना से कुछ न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न पेखं तिलक कढ़ाए स्नान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस दुर्मस्तक लेखं तिन जन्म सवार अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहू गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार पुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुवावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दर गै मनी है मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देख न पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यो नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी बिचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलया स्वामी जो जन हर का सेव को हर किसकी कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाणंदो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा।

सिमरत हर लादा, नेचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गा वादा, सच धर्म तप नेचलो दिन रहन अरादा, दया धर्म तप नेचलो जिस कर्म लिखादा, नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा, नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा, जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा, स्लोक डखने महला पंजवा, जो दुबंदो आप सो तराए किन खे, तारे निड़ो भी तार नानक तिर स्यों रत्या, महला पंजवा, जिथे कोई कथन

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ज्ञानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब पर लै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह क्या

वेराव वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम है रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जोलो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते दिखया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया, गुरु जान दिया समझाए, अंतर्गत हर पेटिया, अब मेरा मन कत हो न जाए।

रिज सिद्ध जा को फुरी, तब काहू क्यों क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहूँ, मैं बोलत ही बड़ लाज।

राम उदक दे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

उदक समुद्र सरल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसह का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पांच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम त्यावेंगे। जित हम लाए तिक ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी

अनुभव होए वणा हम्बे, सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े, हुक्म बूझे ता निर्भो होए वणा हम्बे। हर

पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। कबीर का शब्द राग मारू बानी नाम देव जी की। इको ओंकार सदगुर प्रसाद। चार मुकत चार सिद्ध मिलके दूल प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहू जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद राज भवीकन अधिक करयो। नव निज ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय दे धर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारो रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर सलता कह। हर हर हर न जपस रसना खबर सब छाड़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे। व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े पार लागी। कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी सब मन कर्म सो कर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हा गण नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने।

हर बिन रहन न जाए। कोट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीरग सु पावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुपाए हर स्यों प्रीत बनी। हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे धन उबी गुण सारी, घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। पुनव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे। केत

सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे, दामन चमक डा।

नानक सा सोहा गण चंके फिर कै अंक समावे बादो परम भूली पर जो बन पछताने जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माने बरसे निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवे बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभु तै ही जाइए असुन आओ फिरा साधन झूर मुई सामिली है प्रभु मेले दूजे पाए सुई झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कतन किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज बले तत जलाया दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ मा है सरसी अवगुण मारी मरे न सी जय गुण मारी तामरसी नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड दर खोलो एक घड़ी खतमासा मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर ने चल पावे नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे ओख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख आवत की नाही मंतन वसे मुखे मंथन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी अंडल वीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुंद समावा पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस बया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ बहुते वेत करे फिर बाजो मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मूरत पर

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राव सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

सच संभालिया ऐन सदेश विचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़िया लम्मा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुग परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण भी सरया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट था पया सो कब गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आमन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संताप है ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आप है तेई अड़े घर सबद पतिनी सावरड़ा तिर पानी नानक सदगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

वह चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वह नानक मीरा ही रह बेदया गुण कह हार करो वह गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर न दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुरथानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जाप साचा महल चिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आने आराम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समान आराम बहुत साध लुबाने किरत कमाने दुसड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत रुद्र।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन्ने उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम, क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, तिस दिन रह न जाए हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती, फिर दिन प्यास न जाए अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सब सारिया गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हर सतगुर वित्तों वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम, मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत्य नित चवा राम, प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे, दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए, अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए, हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल तारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे, सुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया, तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया, तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, हमरे हाथ किचना है जा तू मेले ता हों आए मिला, जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आरा दिया, तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया,
तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैया।

परपूर सब ऊपर साथ धने। तू थान सनंतर हर एक को एक रव्या, वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते, असंख्य अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एक को एक रव्या, तेरी भगत भंडार असंख। जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले, जिस कै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै, जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया, बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे, जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। तुखारी महला चौथा, नावन पूर्व अभीच, गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया। अंतर ज्योत परगासी, जन्म मरण दुख खिन में बिन से। हर पाया प्रभ अविनाशी, हर आप करते पूर्व किया। सतगुरु कुल खेत नावन गया, नावन पूर्व अभीच, गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया, तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया, सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक, सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा, तिनके किल विख नाथ गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी, खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। दुतिया जमुन गए गुर, हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर, पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे, जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जागाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर, हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत, किने आड़ ना दाम लया। आड़ दाम किच पया, ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई, हम करें क्या किस पास मांगे। सब पाग सतगुर पिछे पई, जागातिया उपाव स्यान, कर विचार डिठा। पन बोल का सब उठ गया, तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना, गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ, सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट, पंच चोर बटवारे, तिनका थाओ थिओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे, गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना, गुर मन दीना। सुन बचन तुम्हारा, मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाई ठाकुर, तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा, सब गुण तेरे। खनिए वंजा दर्शन तेरे,
दर्शन तेरे सुन प्रभु मेरे, निमख दृष्ट देख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा, आस प्यासी फिर कह ताई, जो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभु मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता, प्राण सुखदाता गुरुमुख जाता, सगल रंग बन आए, सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए, जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोय पापी पर्दा, ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते, पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका, केदारा महला चौथा, कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद, मेरे मन राम नाम नित गाविये रे, अगम अगोचर न जाई हर लख्या, गुर पूरा मिले लखाविये रे, रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविये रे, सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविये रे, हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविये रे, जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ाविये रे, हर नाम अरादे से तन जन कहिए, तिन मस्तक पाग तुर लिख पाविये रे, तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों फुत मिल मात गल लाविये रे, हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मती जित हर पाविये रे, ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविये रे, केदारा महला चौथा, कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे, अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे, जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की कूर कर हरे, केदारा महला पंजवा, कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद, माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी, रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी प्यास बिदानी, अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी, खिलारा महला पंजवा, कर कीजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद, दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल, रहाओ अनिक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारेओ, नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर, लग संतना पग पाल, केदारा महला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सरनी आयो नाथ निधान,
नाम प्रीत लागी मन प्रीतर मांगन कौ हरदान रहाओ। सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रागो चरण कमल संग त्यान। केदारा मैला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरुष प्यारे जब सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपाले सगल संभाले सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभु पुरख विधाते कट कट तुझे दिखाओ। किदारा मेला पंजवा

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहंग बुद्ध तजावो अपनी भगत दे दयाला वड पागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात।

हो महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए निहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपक बिखिया रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बासत मिले लिखत तुर मात केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध सरी चिदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापै संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की छार केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवें ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

पुस्तक निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। राज गुण तम गुण सत गुण कहिए।

गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बस के पार चलाए, पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक, आपे है पासारी, आपे देह दिस आप चलावे, नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, निधि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, है जे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझे, हर रस पावे भाई। जेते कट अमृत सभी में पावे, तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवा दर फूले, ता मन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से, कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया, जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे, बूढ़ मुए बिन पानी।

राम ना जपो कवन प्रम पूले, तुम ते काल ना दूरे, अनेक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के विद औद बिहान कह कबीर अंक की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे इको।

विडानी करे कराए जाने आप नानक देखै थाप उथाप इको अंकार सतगुर प्रसाद राग पैरो महला पहला कर दूजा गुर कै शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे पल जल बिन शब्द क्यों तरिए नाम बिना जग रोग व्यापे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीतिया सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर्क उतारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रहे उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम निवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द पेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब हूँ न जानस एको दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल तड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाईए अमर पदार्थ से किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाईए गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लहै।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पसम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देखो ब्राह्मण होए, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

खिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुरु कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

विचार हुकम बुद्ध समाना। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देयो। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों मैला तीजा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों मैला तीजा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दुबदा मनमुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम्मे ठौर न पावे बिरथा जन्म।

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रब आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ता ते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुण का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया। रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अन दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर किसा

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, किन मैं पयान रूप निक्षया थम उपार, हर नाथ से नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उड़ारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए, दिते संत जना को आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई, जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन पगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने मूल

पर कृपा मेलो सब संगत टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारित हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सब ना माहे तुझ तो बाहर कोई ना है। हर सुखदाता मेरे मन जाप हो

जिसको तुम हर राखिया भावे तुझसे मेरे कोई न जावे। तू जल थल मरियल सब तय भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजू।

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जे सो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बो नीर पवाया। नैतिक अदुख सुकाया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया।

कहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पै ने काम, राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार, नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खत्म जा

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभु का साचत कहते मेरा अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए।

महला पंजवा जिस तू राखे कुछ कौन मारे है सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वैजे करे चोज विदानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार राव जिनसे व्या निरपो सुखदाता।

जन नानक अपर न साचे कोए ठहरो मैला पंजवां। तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरे नरहर तौ करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए माया मोह करे कड़पतिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

बासन रोग पवर विनसानो, एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। कहरो महला पंजवां। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया ता सबै सुख।

निर्वैर पुरुष सतगुरु प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते। जिस पापी को मिले न तोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु।

नानक उदरे नाम पुने चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, गुरु मन दी जय ता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख डेरा तह, अमृत नाम शीतल मन गह।

पाधार कहो नानक जिस आप दियार हैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संतार।

पूरन होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

का स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लैत अनहद पूरे नाद प्रभु कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते सही प्रधान नानक जा कै नाम विधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ। जा के कर्तव्य लखे न जाए जा का परवासा सब कट माए।

फिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विख्या का सब

नानक आया सो परवान, पैरों महला पंजवा, संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दूप साम, दान दैत निंदक को जाम, संत संग करें जो बाग, तिन निंदक नाही किसाद, रहा

जाएं निर्मल मना सगल मनोरथ पूरन काम भगत अपने को देवो नाम सफल सेवा गोपाल राय करन करामन हार स्वामी।

ज्ञान है, मूर मुग्ध हो चतुर सुज्ञान है, सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान है, तत् ज्ञान हर अमृत नाम है, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरों महला पंजवा। संत मंडल में हर मन वसे, संत मंडल में दुर्त सब नसे, संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल कहाँ का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ, संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किचु ना कहे, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी, संत मंडल का नेचर आसन, संत मंडल में पाप विनाशन, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुण पास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, पैरों महला पंजवा। रोग कवन जा राखे आप, जिस जन होए न दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, जिस ऊपर के काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे, दुख न आवे ता कै जाम रहाओ, जब ए नासो तब किने उपाया, कवन मूल के क्या प्रगटाया, आपे मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले।

अल्लाह कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहंग बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम तिराए हर हर

सोई भगत जपे नाम जाप मन परदास गुरते मत लई कहो नानक ता।

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए।

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

पूरन मन पानी जल थल मही अल रव्या सोए नानक सब किस प्रगते होए पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत पग

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिदमाय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरो मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय, कर बाहर नाले परमेश्वर रव रहे।

सुबंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरो महला पंजवा पै को पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्स बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

एक चलत उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मन मुख पूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया ले पाटी पांदे कह आया नाम बिना नहीं।

पार। लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

पाए, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल,

जिस नाम हृदय सो पुरुष विदाता, जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, नाम बिना प्रम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस

आया, कहो नानक तत्तै तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

कोट परलो ओ पत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे न जाहे। कोट ज्ञानी कथे ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान।

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तो

भगत करो जन शरण तुम्हारी। नाओ मेरे माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें चोट जानो नहीं दूजी। नाओ मेरे बंदप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए।

पहचाना। उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन आप

निज पद ऊपर लागो त्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद, रब ऊपर घेरा।

आहे। क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

तु मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

ताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण ले सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

फैला। सगल पवन तेरी माया मोह, मैं अवर नदी सह सर्व तो हो। तू सुरनाथा देवा देव, हर नाम मिले गुरु चरण सेव। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए। तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग। बिन गुरु मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध।

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

अहंकारे गुरु राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

दूर गुर के शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चे पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन

चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेख सद हजूर छाव कणी फूली बन राय गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विचो झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाई है नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किस करे सोई पर भोग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक को चेत है फिर जून नावे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम से वो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चहु जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट होए इक साचे शब्द रहे लिव लाए से जन साचे साचे भाए साचे आए देख हजूर संत जना की पग पंकज दूर एको करता अवरण कोए गुर शब्दी मेलावा होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करे जन देख हजूर संत जना की पग पंकज दूर हर सेती सद रहे लिव लाए पूरे सतगुरु दिया बुझाए दासा का दास बिरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ एको सेवो अवर न कोए जित सेवे सदा सुख होए ना ओ मरे ना आवे जाए जिस बिन अवर सेवी क्यों माए से जन साचे जिनी साच पछाणिया आप मार सहजे नाम समाणिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक सियान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु के शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित शरीरा, मन निर्मल सदगुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साच समाए, साचा से वो साच पछाने, गुरु के शब्द हर दर निशाने, दर साच सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब फूले दूजे पत होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाए, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

लै पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसै।

शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद

देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कह लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नीचू का अभिमान सहज पाए पाया हर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक बखान है साच नाम बसंत महला तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौल्य पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ताए को जाने कहत नानक हो मैं कह न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु पे तै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम रखे उदारे मन बसंत तन

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, ए मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चितनाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कदे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए, ए जग हरिया सतगुर पाए।

तूर्तिना की अकुलीय पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद।

मन मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले त खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, तखंड परम उपाव कर था के, रिद अंतर माया।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल रिख मल परया, मिल संगत कर प्रभ हंसे, रहाओ तुमरा जन जात अल जाता।

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे। गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दा।

नानक जाचे एक दान कर कृपा मोहे देव नाम। बसंत महला।

तैसे उदाहरण गुरे पीर तुम दाते प्रभ देनहार। निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ।

अब तारा दें जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्श देख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूझी गुर प्रसाद मन आधा ना हर रसे स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो इहो निधान बसंत महला पंजवा तुम बरदाते दे रहे जी प्राण में रव रहे दीने सगले पोजन खान मोहे निर्गुण इक

तरह टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सर...

है लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए एव पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदया पूरी मेरी आस, किलविक काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरत स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रव तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेह निस्तार, पाव

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख प्र

जप नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत पद कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निध एहे, कर्म प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी,

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दयाल।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बासकू।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इन बिद पासा तालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन।

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने। जिसनों कृपा

है भाणा कहो नानक कह पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हिंडोल मैला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रबधनी।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महलानो।

आओ एह जग तुए का पहार ते साचा मानिया के विचार तन धारा संपत गृह कछ संग न चाले समझ ले एक पवित्र नारायण।

के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

प्रेम आधार, गुर शब्द बिक प्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तो है, नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपाधार, बसंत महला पहला, मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नै अस्थिर दिसे एक

सतगुरु मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कड्डे धोए, सदा मुक्त बंध ना सके कोए, सदा नाम वखाने और ना कोए, मन हर के पा

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख

साफ़ हर नाम निवासा आप पछाण रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख पागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहज मरो जीवत ही जीवो अपनो कर राखो गुर पावे तुम रो होए सो तुझे समावे भोगी को दुख रोग व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधूले गर्भ जाहे इन बिदना गे जोग नाहे।

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैं।

आपे जल अपवंतर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजामल उदरिया कह एक बार बाल्मी कह होआ साध संग त्रू को मिलिया हर निसंग तेरिया संता जाचो चरण देन ले मस्तक लावो कर कृपा देन राव गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक विप्र सुदा में दाल दुपंज रे मन तू भी पज गोविंद बदक उदार्यो खम प्रहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दासत भाए रे मन तू भी हर ध्याए प्रहलाद रखी।

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

राजा कब मंगन हार, दुख सुख बादो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके की मैं होत बितार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह।

पर कृपा प्रब देहो नाओ तू करता तू करणहार तू ऊंचा तू बहु अपार कर कृपा लड़ देहो लाए नानक दास प्रभ की शरणाए बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न पाई पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ दिन रैन नाम से आयदा फिर पाए न मोआ जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौल

जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अखाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जारे पाच बर्ब पचीसक संग काच नौ बैया दस गोन आहे कसन बेहतर लागी पाहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जिन्हें कटे मूल नित बगे ब्याज।

चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, जय जिस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवे जूठे जाए भी जूठे, जूठे मरे अभागे,

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

लटक त्रुट टोहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस पर में है सो

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभिमान ना

उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपाधारी। नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी। सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम दिहो प्यारे। जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ। जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे। अन दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रसना।

नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सो सत।

मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे ही रे सतगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन नीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी,

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण।

पंच शब्द वद पाग मथोरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन, हर हर अमृत नाम।

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ, वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान, करहें सोम पाक हिरें पर

आन उपाओ न को सूजे हरदासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा सार महला पंजवा माई तीर रही प्रे बहुत विरागी।

पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत पल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेता किछु।

दिशाएं खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा कै लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लइए रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

और ब्रह्म तिराय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल बिना से जो आवे हर संत सरन आप जपे अवरे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निकसो तो लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

तो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अलक रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुझ

मन कहां लुबाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को अकाल मूर्त है।

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ है।

मोहन कायावो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया, देह नाव बलिहार।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पर आते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पए सुखदाई अंधुले मानक देखा।

सेता नानक दृष्ट आयो सर्व ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रेम मांगे एक आयो सर्वथान देश प्रेय रोम न सम

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाए पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पहे है क्यों छेदियो दुष्ट बिगाना रहाओ। तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोग अज्ञान प्यान इतने मुख ना की।

मेरे मन शीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बस कर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजा।

हर भगत पंडारथ जीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे ओ कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुरदर

स्वामी और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे मेरे माथे। सो नानक मैं

बताओ। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया, कोट पराद खिन में खो भई है, गुर मिल हर हर।

जैसे मात पिताए तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा। अपना मीत स्वामी गाये, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ ध्याये रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर, तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो, तो लाज लोन होए जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताये, सारंग महला पंजवा। ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लिया वो अवर

औखद मुकदीनो जाए पया गुर पैरे कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काठ सिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेरे सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

न विसरै तब जीवन पाई, बिनती नानक हिसार है। सारंग महला पंजवा, मन के पै पौ दूर पर आयो, लाल दयाल गुलाल लाडले, सहज सहज गुन गायो रहाओ। गुर बचनात समात कृपा ते, बहुर न कथु धायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वचल गृह पायो। नाद विनोद कोड आनंदा, सहजे सहज समायो, करना आप करावन आपे।

पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखार प्राण।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाये वडभागी नानक संतन कै कुर्बान सारंग महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिकी तुम तारे सुमत संग तुम्हारे।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम करता।

निर्भव भय सगल पाव मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई, पेख जीवा परताप रहाओ, गुरु उपदेश साध की संगत, विनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक मन साचा, पूरन पूरे नाद, सारंग महला पंजवा, मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया, किस गुर कह जाइए।

रह रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान काम क्रोध निंदा वासुदेव रंग लावे। दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

समाए अनद अनद गुण गाया बां पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवां हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

अच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कह द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

एकस बिन किछ होर न जाने अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये जोरा ते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा जाते साधु शरण गही, सांस सहज मन पयो परगासा।

में निर्मल बहुर जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा तू निथा में थाओ, सास सास संभाल हर हर नानक सद बल जाओ, सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम, सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी, सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन नेचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाये सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको जाता अंत न पार, सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे बिनस जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे कुर को लागे सोई तुरंतर सोई बसंदर हर एक

मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गी दे होहत ने संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख को।

हुए एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाहे। पूरन परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन, तुलना कछुए लाहे। चरण कमल नानक मन बे

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले।

हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख बंजन तेरे संत की रावार।

पूरन होत न कथो बातें अंश प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

अनेक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा माई री चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

पति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाए।

मानो द्वितीया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा बिन से काच के व्योहार राम पज मिल साध।

जोर नानक शरण कृपा निज सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कड़ धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

पंजवा हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचे मिथन सब विस्तार रहाओ साध संगम पज स्वामी पाप होवत खार चरनार

लोभ त्यागे गुरु गोपाल पय कृपाल लबद अपनी पाई। बिन से परम मोह अंध टूटे माया के बंद पूरन सर्वत्र।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

कास्यो न्यो लगाई, जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यो बादर की चाही, तज अभिमान शरण संतन गयो, मुक्त हो है छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही, सारंग महला नावा, कहा नर अपनो जन्म गवा।

सहज समाध सदा लिव हर स्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अंतो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रसरते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन

आवागौन निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर से सदा सुख पाइए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई सारंग महलाती जा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाई दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नामे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जग

पुर बूझ बुझाई सच संजम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा मनमुख।

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जा का विस्तार, सो बाता की

इस बहस के अंतर है अनेक पुरुष अंसा अवतार अनेक इंद्र उबे दरबार अनेक पवन पावक।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थीरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

करिए कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिये परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाई है गुरु प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

भगता को नाम आधार है, नामे सुखोई नानक मंथन रव रहा, गुरुमुख हर सोई श्लोक महला पहला, नानक तुलने तोल जे जियो पिछे पाये, इक

आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ते आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया।

पौड़ी नाय मने दुर्मत गई, मत प्रगति आया नाव मने हो मैं गई, सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया, नाय मने सांत उपजे हर मन वसाया।

मैं अंधे नाउ सुजाता। जेता आखण साही सबदी पाख्या पाए सुवाई, नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वड्याई। महला

सच पवै तुर लेखे पौड़ी। नाम निरंजन अलख है क्यों लख्या जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई है भाई। नाम निरंजन वर्तदा।

पूर बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपत नहीं मोया मंदी सोए।

जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाने जो चले हर से तीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया, श्लोक महला पहला सच वर्क संतोष।

तिकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत तिकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर।

कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिनको जिन हर मन वस्या सो पौड़ी। आस करें सब लोक बहु जीवन जानिया, एक जीवन को चित गढ़ मंडप सुवारिया। बलवंश कर उपाव माया हिर आनिया, जमकाल निहाले सास आव कटे बेतालिया। नानक गुर शरणाई उबरे हर गुर रखवालिया। श्लोक महला तीजा, पर पंडित।

वस्त्र पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गणाए, नानक बिन बूझे किन न पायो, फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया।

न होवई। नाम वसै मन आए बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस्त सब सलाहना आपे ले मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो।

माया मोह विसारिया, गुर का पौ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन हसे, दर गए मोख द्वार, नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस

हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर किसे त्यागो संत जनों जो अंते ले चलाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरुमुख नाम

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहाग हरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभु अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सत सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया।

ऐसा नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मन समाया।

समय जिन हर प्रभु आन मिला रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर से हम जिन भगत सुहावी मुक्त पे गुरु दर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुम्हारा तू मेरा हो तेरा सतगुरु मिले निरंजन पाया दौड़ पव जल फेरा अपने पिर हर देश विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत्साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सबद सुरत पट पाई नानक राम नाम रुद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मलार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछे बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंडार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो सम कर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता दे मनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता किसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बल समान प्याल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा ना हो कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवरात।

मानस का तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से सा चैन आए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हरना।

बुदबुदा कैसा यो संसारा जिस ते हो आतिश समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं सबद जलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै सबद सुभाए मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा जिस बच्चे तिस बिघन न कोय रहाओ त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए सतगुरु पेटे मन मर रहे हर नाम वसे मन

समाले गुरमत सत्संगत ना बिछड़े आंदन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्शे पलक पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आज्ञा करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चितलाए मल्हार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दाता।

एक वसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई। नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई। मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार। हों मैं मार सब मन वसाया हर राख्या उधार जिसे बुझाए।

सबद सुख अंतर सदा निभे तेरे आल राव। मन मुखता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ ना आवे अन दिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम।

वो हुक्म कर सुष्ट उपाय, गुर प्रसादी बूझो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम।

वेद की फिरकूक न होए, मलार न लाती जा। परम परम जोन मनमुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुरु सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभु मिलिया महल कर पाई। प्राणी गुरुमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया। कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरुमुख लगे प्यारे। अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार। दर साचे दुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया। बिन गुरु परम पूले बहु माया, हों मैं ममता दो मोह वधाया। दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुरु शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरुमुख नाम समा

जम के सब लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ, माया मोह अज्ञान।

रखना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर वह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है, गुरमत अंगन।

आए सतगुरु मिले का मिले सुमाए नाम हीन दिन से दुख पाए कृष्णा जमला भूख न जाए जिन पागा नाम न पाया जाए बहु विरथा का कर्म कमाए त्रैगुण बाणी वेद विचार बिखिया मैं बिखिया।

अंदन हर हर त्यारो हृदय मत गुरमत दुख विसारी सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा धारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो तिस विधवा कर मैं तारी हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस

गुरपुरै हों मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार था प्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब जितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुरु।

तू दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण विचरे हर का जन हर जल का नीना हर विसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे मला

हर जन हर कारे लावे, सतगुरु हर हर नाम बिरावे। हर बोलो गुर के सुख मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। परम पूले अज्ञानी।

ब्रह्म बिंदु से सतगुर कहिए हर हर कथा सुनावे उस गुर को छादन पूजन पाठ पतंबर बहुबुद्धि सतकर मुख संचो तुस पुन की फिर कोट नावे सतगुर देव प्रतक हर मुहूर्त जो अमृत वचन सुनावे नानक पाग पले तुस जन के जो हर चरणी चित लावे मल्हार महला चौथा जिनका हीरा बसियो मेरा सतगुर ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हों तिन कै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिन की तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सखा।

कीर्तना ही हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देखवाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

0: किन संगत हर मेलो करमाया, किनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वो आप करे सृष्ट सरकारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपके आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लिया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुख दा ताब लिया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिस ते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरखा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हो मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे बिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुवाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

निरसाद संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बडभागी। हर का पंथ को बतावे, हौं ता कह पाए लागी।

हम हर श्यो प्रीत लागी, हर हम गावे हर हम बोले और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मनमोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमत पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय, ताको कहो परवाह काहू।

ए मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी ओ आया, तो मैं सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, फिर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक संत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मल्हार महला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीर रह न जाए, सार संभाल माता मुख नीरे, तब हो तृप्त अघाई, सम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निधान गृह तेरे, मन बाचे सो लैसी, पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना, मल्हार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेसा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा, सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, पगत करो निर पाए, जब प्रेम आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पहे अनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ न जाई दूरे, मल्हार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निद छोड़ आन को पूजे, आत्म का सी हरते, हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहु जोनी, एक न काहू तरते रहाओ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुगद खल खरते, सागर नाव लंगे कप सागर, बिरथा कथक हम करते, शिव ग्रंच असुर सुर जेते, काल अगन में जरते, नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डारो प्रभ करते, राग मल्हार महला पंजवा, दुख दे कर पहला, इको ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हौं एक खिन तिस बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ, उनके संग मोह

कृपाल पे बड़ पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभु सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती ए हो मैं की टीठाई तई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाय सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तये कृपाल प्रीतम प्रभु मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे की।

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस्ती जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

जियो में स्वामी प्रंतो में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौप दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सत गुर शरणाई। नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई, मनार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाए। कर कृपा प्रभ आत मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कहीं न जाए। कर कृपा पूर्ण

सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगह पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़ अवर न को

सो मन निर्मल जो गुर संगराची, गुर पूरा पाये वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास, राग मलार मैल।

गुरमन आर प्रिय दे आर स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अक्सोहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अप

प्रीतम खिया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुण अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग तन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

आई शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेर बिलप करे बिल लाई कम हर कोर दसो दिस बरस बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काशवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

माई, नदी उपकंठ जैसे कर करवर, सर्पन कर कर माही। उल्टी नदी कहाँ कर करवर, सर्पन डसे दूजा मन माही। गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिख्या गुरमत जारी। मन तन हेम पे सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाते, तू सर्व जिया दयाला। तुमरी शरण परे पत राखो, साच मिले गोपाला। बादी तंग अंग नहीं सूजे, बदिक कर्म कमावे। सतगुरु मिले ता सूजस बूजस।

सात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग शब्द सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई, रहाओ प्रेस्यों प्रीत न उल्टे कबहू, जो ते पावे साई, नींद गई हो मैं तन फाकी, सच मत हृदय समाई।

एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पाए।

आए एक शब्द राचे सत समाए चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा चौदिस नाम पतालं सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा कर्म मिले बयालं जामन मरणा दी से सिर उबो खुदया निद्रा कालं नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुरु ते हर पाए साचा, हर स्यो रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता ए संसार जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

गुर प्रसादी शिव कर जमे विचों सकत गवाए अचर चरे विवेक बुद्ध पाए पुरख है पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नामे जम दंड सहे मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

है। हर सिंह रह समाये मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुरु की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महा पतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन न जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानी।

तम पंजन हर राया आचर्य स्वामी अंतरजामी मिले गुण निध प्यारिया महा मंगल सुख उपजे गोविंद गुण निध सारिया मिल संग सोहे देख मोहे पूर्व लिखिया पाया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिलिए मन रहसिय ज्यों उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी छे लाल कमल विग से सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द ना

तू लोड़ लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दै लाए आप छपाया।

वर्षे लाए झड़ी, नानक पाने चले कंत के, सोमानी सदा रली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपने, इसमें गए हाथ किस

जाको नगर करे नानक नगरी बाहरी सब करन पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आडाने आका

गुरमुख पथ सो लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

जो हर चरणी रह लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए।

सच्चा साहिब मन वसे ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

गुण में रह समाए, अपना आप आप तोल सी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हों बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ ना पाए। विण नामे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किसना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, एहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवगल वन। महला तीजा, बाबीहा जल में तेरा वास है, जल ही मैं फिरा है, जल की सार न जान ही का तू कूकन पाहे। जल फल चहो दिस वर्ष दा खाली को ठाव ना है, एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के ना है। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पे आए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब कै वसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवे।

ये तन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। ज्ञानिया का तन नाम है, सभी रह समाए। नानक जिनको नजर करे ता इहो तन पल्ले पाए पौड़ी। आप कराए करे आप, हूं कैसो करी पुकार। आपे लेखा मंगसी आप कराए कार। जो तिस पावे सोती है हुक्म करेगा वार। आप छदाए छुट्टी है आपे बक्षण हार। आपे वेखे सुने आप सब से दे आधार। सब में एक वर्तदा फिर सिर करे विचार। गुरुमुख आप विचारी है लगे सच प्यार। नानक किसनो आखी है आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा। बाबी हा इहो जगत है मत को परम फुलाए। इहो बाबी हा पशु है इसनु बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए। नानक गुरुमुख जिन पिया तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा। मलार शीतल राग है हर त्याय शांत होए। हर जियो अपनी के

प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जानी। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रहन न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख।

अवगन यार जिस बक्से सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभु पाया सत्य दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया कोई न सके जमताल सच्चा रखवालिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सब निहालिया नानक नाम विधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए मेघ वर्षा दया कर गुड़ी छह बरलाए बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सोसा लाई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल न पाए नजर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही गिणना में तन छार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी।

दिन रात सगद ना पाया, तीन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन सगदे आचार।

भतीजा। गुरमुख मल्हार राग जो करे तिन मंकम शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मंतन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची पगत है सहजे ही पट होए। चंद जुग में कोर अंधार है मन मुखरा न कोए, सेवड पागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वर्ष कर दया लोका मन उपजे चाओ,

गुरमुख शब्द समा लिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया, शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, दर सच्चा सच्चार सच्चा आया, पूछ ना सके कोई जाखस ने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया, श्लोक महला पहला, कुल्हा दें दे बावले, लेंदे वडे निलज, चूहा छद न मावई, तिकल बन्ने छज, दीन दुआई से मरे, जिनको दीन से जाहे, नानक हुक्म न जा पई, किथे जाए समाहे, फसल आहारी एक नाम, सामनी सच नाओ, मैं महदूद लिखाया, खसने के दर जाए, दुनिया के दर केतड़े, केते आवे जाहे, केते मंगे मंगते, केते मंग मंग जाहे, महला पहला, सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंच सै दाना खाए, डके फूके खीरे उड़ावे, सहे गया पछताए, अंधी फूक मोई देवानी, खसम मिटी फिर भानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल लाए, खसने पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए, सत्ता शिव मारे सह मिर्या, सब पिछे पे खाए, होए सताना पुरे न मावे, साहे गए पछताए, अंधा किसनो बुक सुनावे, खसने मूल न भावे, अक्षों प्रीत करे अक्सिद्धा, अकडाली बह खाए, खसने पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए, नानक दुनिया चार दिहारे, सुख की तै दुख होई, गल्ला वाले हैं कनेरे, छड़ ना सके कोई, मक्खी मिठे मरना, जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे, तिन पौ सागर तरना पौड़ी, अगम अगोचर तू तनी, सच्चा अलख अपार, तू दाता सब मंगते, इको देवनहार, जिन्नी सेविया तिन्नी सुख पाया, गुरमति विचार, इक नानो तुद एवे पांगा, माया नाल प्यार, गुर के शब्द सलाहिए, अंतर प्रेम प्यार, विन प्रीति पगत न होई, विन सतगुर ना लगे प्यार, तू प्रभु सब तुद सेव दे, इक ताडी करे पुकार, देह दान संतोखिया।

मूरख पुख न जाए, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुर बूझ न पाए, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनों कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, सरम करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडिया, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़िए, जाए तन लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन, किसे न लथी पुख। रूपी पुख ना उतरे, जा देखा ता पुख।

नानक उठे जानिए सा के पाथा पौड़ी। इकना गली जंजीर बंदर बानिए बदे छुट्टे सच सच पछानिए।

गया जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कै सिकदारा इना पर्याना।

रास आप छुटे न छूटिए नानक बचन विनाश महला पहला मास मास कर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंदा मार होम जगतिए देवतिया की बाने मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मांस खाने फर कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंदेशो क्या कही है कहे ना कहे बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त में पन्ने मच्छी मांस न खाही।

ही मैं समाया एक पगवा वेश कर परम दे बिन सतगुरु कि न पाया देश विसंतर पल थके तुद अंदर आप लुकाया गुरु का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप।

गौन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सालाना जिन मन सच्चा भाया स्वरूप महला पहला नानक माया।

तू है मन भाया चाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पलहार अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जांचे दांगिया।

कारण राव सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिल

नितै बनारसी आस पासा अब बिक्र प्रधान ते करे दंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा मल्हार हर जपत तेऊ जना पद्म कवलास पत्तास समतुल नहीं आ

पूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के कैद सब टोटो अंत फिरे अजो बनारसी आस पासा आचार सहत विपर करें दंडौत।

तो प्रभु अपनी हम साथ जना पद परया तन तन साथ जिन हर प्रभु जानिया मेरे साधु पत उधरिया मनुआ चले चले बहु बहु विद मेरे साधु वस वत करिया ज्यों जल तंत पसारियो बग

इतना जाने गतमित गुर किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत में।

खिल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रख

करी जगदीश्वर ते सब ऊंच हम नीच विख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभपात कानड़ा महला चौथा मेरे मन राम नाम।

शोभा जिन उतारे हो हर रस रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गड़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ। मिथ्या परम परम

राम रविया कट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत, हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत, हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत, हर हर नाम दियो मुख

जप मन राम नाम जगन्नाथ कूमन केर परे बिख बिखिया सतगुर काड लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पाप काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लो तरे संग साथ तुम वड पुरख बड अगम अगोचर हम टूट रहे पाई नहीं हाथ तू परे परे अपरंपर स्वामी तू आपन जाने आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम ते आए सत्संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जप्यो अकथ कथकाथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे पज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम किर

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल।

कटे काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार आ

सुख पावे जप हर हर नाम निदान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर।

जाको सतगुर अपना राखे सो जन हर रस रसना चाखे कहो नानक गुर कीनी माया हालत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा आराधो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाव कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर देह न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पै दयाल सहु नान।

अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बनया।

अनेक स्वांग का छे पेक तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेक प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आयो, सब ते परे परे ते ऊंचा, गैर गंभीर अथायो, ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यो परदा लायो, गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाध समायो। कानड़ा महला पंजवा, संतन पह आप उदाहरण आयो, रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, कांटे रोग पे मन

साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी देखी, सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहा। नै तृप्तानो राज जोबन तन, बहुर बहुर फिर ताया, सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांत पाई गुन गाया। बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया, साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ, सगल आस होत पूरन।

सतगुरु प्रसाद। कथिए संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाइए मान।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ।

हर हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नाथे रिद पयंत सा।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रम नास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेउ तेउ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकी गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरो कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

परम तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीर।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाइए, साध जना मिल हर जस गाइए, रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो, चरण संतन के माथा मेरो, पार ब्रह्म को सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना, कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ प्रसन्न, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन, रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम, कलमल दोख सगल मल हरसन, पावन तावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, पोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही आन रहाओ, गोविंद त्याग आन लागे, अमृतो डार पूम पागे, दिखे रस्यों आस्कत मूड़े काहे सुखमान, काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान, पतित पावन सरन आयो उधर नानक जान, कानड़ा महला पंजवा, अविलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ, चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद, राज तन परवार मेरे सर्व सो गोविंद, साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद, कानड़ा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

हा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पह तेरे, नव निध नाम निदान हर के रे, हर रंग रंग रंग अनूपे रे, काहे रे मन मोहे मगने रे, नैनो देख साध दर्शे रे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

वरना साको एक तुले रह, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रह। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बर्त नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अतरहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

पतित पावन भगत बचल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूरन दुख विनाशन।

मानिक मंदर पाठ सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सैन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकाप राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन प्रम्यो हा

तेज सुभाए आपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करें बसाए, बुन निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए आन सजाए, थाम सनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले।

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है, हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई, कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जप

राम नाम एक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो, कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो, नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो, माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो, पाप विकार मनूर सब भारे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम त्यावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

देख ना गए हर जपत्या अंत ना पावे गो। तू अथाओ अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गो। जिन तू जप्यो तेई जननी के हर जप्यो को

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिवलावे गो सतगुर शब्द दे रिद अंतर मुख अमृत नाम चुआवे गो बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तिस नेड़ नावे दिख चार चार लिवलावे गो ख्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी

ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यों अमरीस अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन पाई।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दर के मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

लग संगत नाम से आवे गो, नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख समावे गो। छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए, सत्संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज समायन, सगले जंत पजो गोपाले, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया, गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया, जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमान।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

आपे आप वर्तदा तू आपे करे सो गया। सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुल बुलो गया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लो गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय। हौ मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए। नानक अंधिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए। हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवर ना कोए। जो हर प्रभु पावे

चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगह पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सबदी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटिए होमे चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम।

रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहुविद पाक उपावनी, सब तेरी जोत जोती विच वरते, गुरमति सुदै लावनी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख पुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेत्यो, तिन जुए जन्म सब हार, गुर तुफे हर चेता।

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विचकल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे ए आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा, सत संगत हर मेर

हर करो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल। गुर सेवा हर हम पाई।

हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरु मंत्र हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे कट कट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे सिखिया पाईदा सब सिद्ध उपाई जी जंत हर देवो दान दयाल प्रभ हर मांगे हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गावे हर गुण चंत महला चौथा हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आशा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वक्त है निकट सब जौला सो बुझे जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला श्लोक महला चौथा सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाज समाए जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सत गुरु गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सत गुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णी है किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जिस

चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए। हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए। हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए। जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। मैला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया। तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे। हर लाहा हर भगत विसेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम है प्रभु।

हर स्वामी हर प्रवचन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर ऊतम हर

सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाय सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन साम सगारवा जा देखा हर नैने। नानक सो प्रभ मैं मिले हो जीवा सद सुने। पौड़ी जगन्नाथ।

ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसे कटाकट लीप न छीपे, बंधन मुक्ता जात न दीसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी सस चंदन जग ससिया, हर जन हर हर हर निवलाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया, कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया, जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतः सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुख हों में मैल लग थई, गुरता

हर कृपा हर जल नावाए सब किल बिख पाप गथई जन के रिद अंतर प्रभु स्वामी जन हर हर नाम पजतई जय अंति अवसर आए बनत है तेरा खे नाम साथई जन तेरा जप गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन्नाथई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ जाने और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने, ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने, हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने, ताते जन को अनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने, जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाइए। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी। कल्याण महला

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन

जय हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिल दी जय। राम नाम तुल

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे, मेरे सतगुरु पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे, नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे, मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छी जय। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म।

मन तन अर्थ करो सब आ गए, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा। ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर, नित चुन चुन पूज करी जय। आत्म देव देव है आत्म, रस लागे पूज करी जय।

चरण तले सिर दी जाए। नाम बिना नकते नर देखो तिन पस पस नाक वढ़ी जाए। साकत नर अंकारी कही है बिन नाम है त्रिग जीवी जाए। जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण परी जाए। नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए। कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए। किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ। मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय। त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय। काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करो रख ले वो गुरु पूरा कार्ड कटी जय। अंतर अगन

ज्यों सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यों चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का दे अमृत पी जय। सापत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कभी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। ताज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जय। परम सुख के बहु उब सुख कही।

जय जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महापंथ बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम रामे ते गत की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नावे पत कब होना होए अवर सियान तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत्व

तेरा अमृत बिक उठ जाए, नाए तेरे सब सुख वसे मन आए, बिन नावे बांधी जमपुर जाए। नारी बेरी कर बरदेस, मन किया खुशिया की चैवेस, जहाँ सदे ता दिल न पाए, नानक कूड़ कूड़ो हो जाए। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरख तिथे लोए, अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोए, यो संसार सगल विकार, तेरा नाम दारू अवर नास्त करणहार अपार। रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर, दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख, जित मुख तू साल आई है तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू हवर पला से सार, जित तन नाम ना उपजे से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म ना पाया, बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई, दुश्मन दुख ना आवे नेड़े हर मत पावे कोई। रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी, तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा, जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बसावे, एते गुण एतियां चंग्याईया देना पछोतावे, तुद सलान तिन तन पल्ले नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला, जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा, सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा, औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार। रहाओ जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुतमाला, शिव ज्योत कन्नो बुद पाई सतगुरु रखवाला, जा के बरत नाही नेम नाही नाही बतबाई, गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई, जा के आस नाही निराश नाही चित सुरख समझाई, संत को परम संत मिलिया नानका बुद पाई। प्रभाती महला पहला, कांका तहया दर परवान दिख अमृत दो संकर जान, क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त है।

सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही एव खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी। मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंपते, एहो रहा निर्वाण, जिससे होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हों तिसके बल जाई, पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई, बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

परवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे रास ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत दे लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करकार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहू न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरम दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आसा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहा कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

छोर न पावे जब लग दूजी राई। एनिस जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई। कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार। ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा। रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने। कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच सोए उत्तम आख ना ऊंचा होए। मनमुख खूल महा बिकाए गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार। नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे किसको जयकार। तू बच्चे जात पत होए नानक कहे कहा वै सोए। हरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान। बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासया दिवलो चाग सहज परगासया। रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए। जम गरबा दे मारिये छूट सा चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुखमूल गवाया दरगह मिले सजाए। जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार। ए नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरे नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप। नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई। रह सुरंग सुरमाई पाई पैनन खां चीत न पाई। सात सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे। रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा। कीरत कर्म कार निज संदा अंतर रव तो राज रविंदा।

भगत करी कराहे मोर, अंतर वसै चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, और न रंगन हारा, ऐनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदस मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु पाया। अति रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसम रसाए राते, रब रहया प्रभु सोई। परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हठ हस्त में पीछिया जा।

मन मुख विच्छेड़ दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशत काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहां करे बपुरा जन बरते, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना, रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरुमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपहुता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, सात शब्द मन मानिया, राज करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहा, हम दिन पगत करो दिन राती, इस जुग का लोहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी, आपे ले हो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे दिहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई, रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाए पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न जाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई, रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन।

गुर कै सबद कमल पर गासया, हौ मैं गुरमत खोई, सब ना मैं एको सच वरते, विरला बूझै कोई, गुरमति मन निर्मल होआ, अमृत तत्व खाने, हर का नाम सदा मन वसया, विच मन ही मन माने, सद बलिहारी गुर अपने विटो, जित आत्म राम पछाने, मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया, नजर करे ता सतगुरु मेले, सहजे सहज समाया, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे पाग से आया, प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी, शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया, कर कर वेखे करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया, कली काल में रव्या राम, कट कट पूर रहा प्रभे को, गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा, गुप्ता नाम वर्तै विच कल जुग, कट कट हर पर पूर रहा, नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया, जो गुर शरणाई पग पया, इंद्री पंच पंचे वस आने, खिमा संतोष गुरमत पावे, सो तन तन हर जनवड पूरा, जो कह बैराग हर गुण गावे, गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरे, कर आचार बहु संतोषं चे, जो किछ करे सो नरक पड़े, एको शब्द एको प्रभु वर्ते, सब एक से उत्पत्तल है, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सालाए, पूरा

हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरका अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमुख पा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलका तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इक्फा सर्वाती मैला चौथा गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम हर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परंगते हरख सोगते रहे निरारा का तू पावे प्राण पते रहा कातड़ पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल फल मीत सोहर सेवो नीता नीत तहां सखाई जय कोई न होवे कोट अपराध इक खिन में धोवे बात करे नहीं पछोतावे एका बख्श फिर बहुर ना बुलावे

गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार, करवाती महला तन्यवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार, तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस लाया सोई जाने, तेक तेक मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा, करवाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम

मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया हड़त पलत जिन गुरे सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया महामुक्ते किया ज्ञानी गुरपूरे की अकट तवानी पार ब्रह्म नानक गुरुदेव वडे पाग पाये हर सेव प्रभाती महला पंजवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुख मिटाया हम बारिक शरण प्रभ दयाल अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव पाप पाप बिन से किन भीतर तय कृपाल गुसाई सास सास पार गम आरादी अपने सतगुर के बल जाई अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत ना पाये लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ध्याई है आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिकसग नासे सच नाम गुर दीनी रासे प्रभ की दरगे शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसे

जो तिस पावे सो फल होस, तिस गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम दियाई, ऐसा गुर पाये वडवागी, जिस मिलते राम लिवलागी, कर कृपा पार जन स्वामी, सगल गटा के अंतर जामी, आठ पैर अपनी लिवलाए, जन नानक प्रभु।

पाए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाय, कहो नानक वड पागी पाय। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्साहा, हर की दरगे नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाय वड पागी।

नानक गुरमुख उतरे पार प्रभाती महला पंजवा गुरपुरा पूरी तांकी कला गुर का शब्द सदा सद अटला।

पार ब्रह्म प्रभु सुगुण सुजान गुरपुरा पाये वडबागे दर्शन को जाये पुरबान रहाओ किलगित में ते शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आ प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभु पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपा धार पूरन कर्मता के आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न भवे इहा उहा चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल तल मैयल पेखे परपूर नानक उदरस तिस जन की दूर प्रभाती मैला पंजवा कुर्बान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जत माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए।

बिन सतगुर के ते कोई न जानी, सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी, पाओ पगत गुरमति पाए, हों मैं विच्चों सबद जलाए, तावत रात

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख ने तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार, मूर्ख आप

आद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संताप।

अंतर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वै विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

दुख बिसरे तब पाए। सूठी गुरमति चतुराई बिन सत बार न लागे काई। रहाओ मन मुख को दुख दर्द व्यापस मन मुख दुख न जाए। सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब पगत न होवस हो मैं पचे दीवाने। इहो मनु आखिन ऊब प्याली जब लग शब्द न जाने। भूख प्यासा जग पया तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए। सहज सहज मिले सुख पाए।

परख सजा में पाया। जात वर्ण से पै अतीता ममता लोभ चुकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में न चुकाया। नानक तुम के चरण पखाले

ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल न जाननी, मानस हर मंदर न होए, हर मंदर हर जियो साजिया, रखिया हुकुम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, कोई ना मेकन हार, सबद चीन सुख पाया, सच्चै नाए प्यार, हर मंदर सब देशो होना, कंचन तोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुरबिन कोरंतार, दूजा पाओ कर पूज दे,

पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हरता हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाए। पारस पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला तीजा कह पाए जागे सृजन जागरण करें। हों में मैल उतार सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डे मार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुम उपजे। दुखों में विच्चों जाए हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने। हर राख्या उधार ऐसे ओथे सुख गणा

मन मुख दर टोई नाल है, पाए दूजे कर्म कमाए, त्रिग खाना त्रिग पहनना, जिना दूजे पाए प्यार, दुष्टा के कीड़े दुष्टा राते, मर जमे हुए।

तरह सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज

है काला, अंतर कपट पुरे बेताला, वर्मी मारी साप नमुआ, प्रभु सब कुछ जाने जिन तू किया, तू वरताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गे के नस्ता, देश छोड़ पर देश धाया।

वेश ना पाये मह दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर ठौर न ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरे सब कुटुंब तराईए, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलद सब काते, धर्म राय के कागर पाते, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विकाल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीरथ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय धारे, गोविंद जपत सब कार्य सारे, ऊंचे ते ऊंचा प्रवथान, हर जन लावे सह ज्ञान, दास दासन की बाँचो दूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहा रव ऐसा रूप बसानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे अमद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन भीखू बाने भीखे

करवासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो परगा से माटी कुंभे हो आप ही करता भी तुल दे हो जी का बंधन कर्म व्यापे जो किस की आसो आपे आपे प्रणवत नाम दियो इहो जियो चित्त वै सो लहे अमर होए सब आकुल रहे।

हृद अंतर कर तल काती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल पग

दोतोति कर्म मुख खीरं हृदय चुरी संध्यानी पर दर्द हिरन की बानी शिल्पू जस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचुस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाथं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नहीं क्यों गवार, बिनसत नहीं लगे बार हो रे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

हाथ है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

तत आसन नानके गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरहंतं

सुर दिसै दुखम थान बसंत पूछै मैं सिमरंत मरण सदा छिते। होवंत आ गया भगवान पुरख है नानक की सास अकर थके।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे नृत मोहन अलप बुद्धन रतंत बनता दिनोद साहन जो बन बेहतर कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जीत पाल के अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋद बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता।

महीबते विपरीत बुद्धिं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

ਡਾਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰ।

करे न चित्तो, जाका अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग के तो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

चरणे हो सुती होए अचिंते मन आस पुराया हर हां जा घर आया कं ता सब कित पाया।